0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हुन थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा,
3: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई, जो ने एक दहाके तो वेरी बी टोयोटा दे नाल।
2: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लॉन्ग रोड, हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट choice।

0: Star Studio 18 and Panorama Studios Production presents.
1: मेरी बेटी के लिए justice चाहिए.
2: मुझे justice नहीं, बदला चाहिए.
0: Drishyam The Conclusion, starring Ajay Devgan, Tabu, Shreya Saran, Jaydeep Alawar, and many more.
3: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा? बताना मुश्किल है.
0: The end we've been waiting for. Drishyam The Conclusion in cinema 2nd October.
3: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है. आखिरी हिस्सा बाकी है.
0: Overseas released by Zee Studios.
4: ਚਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਤਰਪਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ 1674 AM.

0: हाई सिडनी वालियो, तुसी सुन रहे हो अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी 1674 AM। रेडियो
1: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर सिद्धे आओ आईएमई एडवाइजर अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड़ नू नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491 स्किल असेसमेंट पार्टनर वीजा पेरेंट वीजा चा स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर कॉल 02-9063-1618 हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।
2: सुनो जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
3: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
2: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना तुसी आ किथे जा रहे हो?
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
2: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
3: आहो जी आहो
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स्टन विच भी तुहाडी सेवा विच।

ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ध्यान से इश्क कीजिए, क्योंकि शादी भी हो सकती है। सो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना राजीव ठाकुर और आप सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। हंसिए, मस्त रहिए, नाचते रहिए, खुश रहिए।

0: बात करके तो तसल्ली कर रहे हैं कि कहीं कोई सांस बाकी तो नहीं रही।
1: हुन थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
2: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई, जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
1: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
3: दिन भर दे कम्मा कारां च घर पैसे भेजना शामिल करना चाहुंदे हो, जिंदगी तुहानू चाहे जिथे भी लै जावे, वर्ल्ड रेमिट नाल तुसी अपने फोन तो ही जल्दी ते सुरक्षित पैसे भेज सकते हो, ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਫੀਸਾਂ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਰੁਝੇਵੇਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਵਰਲਡ ਰੈਮਿਟ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ।
4: ਦਿਲ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਤੇ।
5: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਟੂ ਆਲ ਦ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ ਲਿਸਨਰਸ।

बस भी गवर हाँ जी हाँ जी 1674 ये नहीं है 71-72 ये है 1674 ये है 1674 सुनते रहो सुनते रहो हाँ जी AM।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
1: आहो जी आहो।
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच। ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना, जाओ इधर उधर, सीधे आओ आईएमई एडवाइजर। अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जा स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक, हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02-9063-1618। हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।
2: मेरा नाम है रतन नूरा और काम करता हूँ खत्म पूरा बे, लव यू ऑल, भावनाओं को समझो।
3: दोस्तों मैं हूँ सुनील पाल और आप लोग सुन रहे हैं मुझे रेडियो हांजी पर, रेडियो हांजी 1674 AM। अब आपका AM सिर्फ रेडियो हांजी सुनना होना चाहिए। हांजी हांजी, कभी ना कहना ना जी ना जी।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: This autumn, laugh out loud with Ayushman Khurrana and Saad Ali Khan in Urda Teer.
3: Ek Pakistani jasoos Hindustan jayega.
4: Desh bhakti to yaad aa gayi.
5: Desh kaun sa hai? Ye bhul gaya.
2: A spy mission gone wrong with hilarious moments.
6: Woh ye border chal rahi hai?
2: Nahi ji, ye to Urda Teer chal raha hai from October 9th at cinemas near you.
7: Yeah, here we go again.

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।
2: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर सीधे आओ आईएमई एडवाइजर अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड़ नू नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491 स्किल असेसमेंट पार्टनर वीजा पेरेंट वीजा जा स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर कॉल 02-9063-1618 हुन पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।
3: दिवाली रोशनी का त्योहार तो चलो शान के साथ जायके से लगाएं इसमें चार चांद रिवाजों के रंग खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार। अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी चना मसाला पालक पनीर किचन किंग दाल मसाला चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ।
2: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर सीधे आओ आईएमई एडवाइजर अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड़ नू नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491 स्किल असेसमेंट पार्टनर वीजा पेरेंट वीजा जा स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर कॉल 02-9063-1618 हुन पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।
1: Star Studio 18 and Panorama Studios production presents.
4: नहीं बेटे के लिए justice चाहिए।
5: मुझे justice नहीं, बदला चाहिए।
1: Drishyam The Conclusion, starring Ajay Devgan, Tabu, Shreya Saran, Jaydeep Alawar and many more.
6: इस बार खतरा कब कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है।
1: The end we've been waiting for. Drishyam The Conclusion in cinema 2nd October.
6: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आखिरी हिस्सा बाकी है।
1: Overseas release by Z Studios.
7: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया की जुगाड़ लाया है।
8: जुगाड़ नहीं ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमिग्रेशन दा जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं ए स्टूडेंट वीजा एएटी अपील्स स्किल्ड वीजा पीआर यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
7: नंबर दा दे बंसल इमिग्रेशन वालियां दा।
8: हां जी अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
9: This autumn, laugh out loud with Ayushman Khurana and Saad Ali Khan in Urda Teer.
10: Ek Pakistani jasoos Hindustan jayega.
11: Desh bhakti to yaad aa gayi.
12: Desh kaun sa hai? Ye bhul gaya.
9: A spy mission gone wrong with hilarious moments.
12: Woh ye border chal rahi hai?
9: Nahi ji, ye to Urda Teer chal raha hai. From October 9th at cinemas near you.
13: सुनो जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
14: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
13: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना तुसी आ किथे जा रहे हो।
14: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स टंच
13: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
14: आहो जी आहो
13: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स टंच विच वी तुहाडी सेवा विच

0: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਾ ਜਾਓ ਇਧਰ ਉਧਰ ਸਿੱਧੇ ਆਓ IME ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਕਿੱਲ ਵੀਜ਼ਾ 186 189 482 491 ਸਕਿੱਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਪਾਰਟਨਰ ਵੀਜ਼ਾ ਪੇਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ PR ਤੱਕ ਹਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲਈ ਐਕਸਪਰਟ ਗਾਈਡੈਂਸ ਅੱਜ ਹੀ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ IME ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਕਾਲ 02-9063-1618 ਹੁਣ ਪੈਰਾਮੈਟਾ ਸਿਡਨੀ ਅਤੇ ਨਿਊ ਡੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ IME ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ
1: दिवाली रोशनी का त्योहार तो चलो शान के साथ जायके से लगाएं इसमें चार चांद रिवाजों के रंग खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी चना मसाला पालक पनीर किचन किंग दाल मसाला चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ
0: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਾ ਜਾਓ ਇਧਰ ਉਧਰ ਸਿੱਧੇ ਆਓ IME ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਕਿੱਲ ਵੀਜ਼ਾ 186 189 190 482 491 ਸਕਿੱਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਪਾਰਟਨਰ ਵੀਜ਼ਾ ਪੇਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ PR ਤੱਕ ਹਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲਈ ਐਕਸਪਰਟ ਗਾਈਡੈਂਸ ਅੱਜ ਹੀ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ IME ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਕਾਲ 02-9063-1618 ਹੁਣ ਪੈਰਾਮੈਟਾ ਸਿਡਨੀ ਅਤੇ ਨਿਊ ਡੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ IME ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ
2: स्टूडियो 18 एंड पेनोरमा स्टूडियोस प्रोडक्शन प्रेजेंट
3: नहीं बेटे के लिए जस्टिस चाहिए
4: मुझे जस्टिस नहीं बदला चाहिए
2: दृश्यम द कंक्लूजन स्टारिंग अजय देवगन तबू श्रिया सरन जयदीप अलावर एंड मेनी मोर
5: इस बार खतरा कब कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है
2: The end we've been waiting for दृश्यम द कंक्लूजन इन सिनेमा 2nd अक्टूबर
5: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है आखिरी हिस्सा
2: Overseas release by Zee Studios.
6: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया की जुगाड़ लाया है
7: जुगाड़ नहीं ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू PR दी राह भी दिखाई एना ही नहीं ए स्टूडेंट वीजा AAT अपील्स स्किल्ड वीजा PR US विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने
6: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा
7: हां जी अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au
8: This autumn, laugh out loud with Aishman Khurana and Saad Ali Khan in Urda Teer.
9: Ek Pakistani jasoos Hindustan jayega.
10: Desh bhakti to yaad aa gayi.
11: Desh kaun sa hai? Ye bhool gaya.
8: A spy mission gone wrong with hilarious moments.
12: Woh ek border chal rahi hai.
8: Nahi ji, ye to Urda Teer chal raha hai. From October 9th at cinemas near you.
13: Suno ji, gaddi Akshara Jewelers wal le lo.
14: Oh, jo hukam meri sarkar.
13: Oh, aa kidhar? Harry's Park wal jana. Tusi aa kithe ja rahe ho?
14: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवरस्टंच
13: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे
14: आहो जी आहो
13: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवरस्टंच विच वी तुहाडी सेवा विच

0: ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਪਤਾ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਰੇਡੀਓ ਵੱਜਦਾ।
1: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
2: ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ 1674 AM 24/7 ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਡੀਓ ਸਿਡਨੀ ਕਾ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ।
3: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन का मसला ना जाओ इधर उधर सीधे आओ IME एडवाइजर अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491 स्किल असेसमेंट पार्टनर वीजा पेरेंट वीजा जां स्टूडेंट वीजा तो PR तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस आज ही परोसे नाल संपर्क करो IME एडवाइजर कॉल 02-9063-1618 हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी IME एडवाइजर।
4: दिवाली रोशनी का त्योहार तो चलो शान के साथ जायके से लगाएं इसमें चार चांद रिवाजों के रंग खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार। अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी चना मसाला पालक पनीर किचन किंग दाल मसाला चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ।
3: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन का मसला ना जाओ इधर उधर सीधे आओ IME एडवाइजर अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491 स्किल असेसमेंट पार्टनर वीजा पेरेंट वीजा जां स्टूडेंट वीजा तो PR तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस आज ही परोसे नाल संपर्क करो IME एडवाइजर कॉल 02-9063-1618 हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी IME एडवाइजर।
2: Star Studio 18 and Panorama Studios Production present.
5: मैं बेटे के लिए justice चाहिए।
6: मुझे justice नहीं, बदला चाहिए।
2: Drishyam The Conclusion, starring Ajay Devgan, Tabu, Shreya Saran, Jaydeep Alawar and many more.
7: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है।
2: The end we've been waiting for. Drishyam The Conclusion in cinema 2nd October.
7: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा बाकी है।
2: Overseas released by Z Studios.
8: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
9: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमिग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू PR दी राह भी बखाई। एना ही नहीं, ये स्टूडेंट वीजा, AAT अपील्स, स्किल्ड वीजा, PR, US विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
8: नंबर दा दे बंसल इमिग्रेशन वालियां दा।
9: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
10: This autumn, laugh out loud with Ayushman Khurana and Saad Ali Khan in Urda Teer.
11: Ek Pakistani jasoos Hindustan jayega.
12: Desh bhakti to yaad aa gayi.
13: Desh kaun sa hai? Ye bhul gaya.
10: A spy mission gone wrong with hilarious moments.
14: Udhar border chal rahi hai.
10: Nahi ji, ye to Urda Teer chal raha hai. From October 9th at cinemas near you.
15: Suno ji, gaddi Akshara Jewelers wal le lo.
16: Oh, jo hukam meri sarkar.
15: Oh, aa kidhar? Harry Spark wal jana. Tusi aa kithe ja rahe ho?
16: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवरस्टंच,
15: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
16: आहो जी आहो,
15: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवरस्टन विच भी तुहाडी सेवा विच। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੈਰੀ ਬੀ ਟੋਯੋਟਾ,
17: ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਟੋਇਟਾ ਦੀ ਬੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬੈਸਟ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਬੈਸਟ ਗੂਗਲ ਰਿਵਿਊਜ਼। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਟੋਇਟਾ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੋ ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੈਰਬੀ ਟੋਇਟਾ ਦੇ ਨਾਲ।
15: ਬੈਸਟੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 0431-465-186 ਤੇ 212-216 ਓਲਡ ਜੀ ਲੌਂਗ ਰੋਡ ਹਾਪਰਸ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ। ਵੈਰੀ ਬੀ ਟੋਯੋਟਾ, ਦ ਸਮਾਰਟ ਚੋਇਸ।

0: जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: और जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो।
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच। हुन तुहाडे मोढे नाल मोढा मिला के तुहाडी तरक्की दी राह नूं होर वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा,
2: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई, जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लॉन्ग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
4: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। इन्ना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
3: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
4: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: This autumn, laugh out loud with Ayushman Khurana and Saad Ali Khan in Urda Teer.
3: Ek Pakistani jasoos Hindustan jayega.
4: Desh bhakti to yaad aa gayi.
5: Desh kaun sa hai? Ye bhul gaya.
2: A spy mission gone wrong with hilarious moments.
6: Woh ye border chal rahi hai?
2: Nahi ji, ye to Urda Teer chal raha hai from October 9th at cinemas near you.
7: Hi, this is Ayushman Khurana and you're listening to Radio Hanji.

0: ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਪਤਾ ਫੇਰ ਕਿਹੜਾ ਰੇਡੀਓ ਵੱਜਦਾ।
1: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
2: Radio Hanji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station.
3: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
4: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
3: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
4: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
5: Star Studio 18 and Panorama Studios production presents.
6: मेरे बेटे के लिए justice चाहिए।
7: मुझे justice नहीं, बदला चाहिए।
5: Drishyam The Conclusion, starring Ajay Devgan, Tabu, Shreya Saran, Jaydeep Alawar, and many more.
8: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है।
5: The end we've been waiting for. Drishyam The Conclusion in cinema 2nd October.
8: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आखिरी हिस्सा
5: Overseas release by Z Studios.
9: दिन भर दे कम्मा कारां च घर पैसे भेजना शामिल करना चाहुंदे हो, जिंदगी तुहानू चाहे जिथे भी लै जावे, वर्ल्ड रेमिट नाल तुसी अपने फोन तो ही जल्दी ते सुरक्षित पैसे भेज सकते हो, वो भी वधिया रेटा ते घट फीसा नाल। सब तो रुझेवे वाले दिनां च भी तुहाडे आपणियां दा साथ निभाउणा हुण बहुत आसान है। अज ही वर्ल्ड रेमिट ऐप डाउनलोड करो अते हर ट्रांसफर नाल अपने घर दे होर नेड़े महसूस करो।
10: हुण तुहाडे मोढे नाल मोढा मिला के तुहाडी तरक्की दी राह नूं होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा,
11: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई, जो ने एक दहाके तो वेरबी टोयोटा दे नाल।
10: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
12: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
13: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
12: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
13: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
12: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
13: आहो जी आहो,
12: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
14: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना, जाओ इधर उधर, सीधे आओ IME एडवाइजर, अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जा स्टूडेंट वीजा तो PR तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो IME एडवाइजर, कॉल 02-9063-1618 और पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी IME एडवाइजर।
15: This station is now the ultimate power in the universe.
16: Radio Hanji 1674.

0: This station is now the ultimate power in the universe.
1: Radio Haji 1674.
2: Star Studio 18 and Panorama Studios production present.
3: मेरी बेटी के लिए जस्टिस चाहिए.
4: मुझे जस्टिस नहीं, बदला चाहिए.
2: Drishyam The Conclusion, starring Ajay Devgan, Tabu, Shreya Saran, Jaydeep Alawar, and many more.
5: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है.
2: The end we've been waiting for. Drishyam The Conclusion in cinema 2nd October.
5: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है. आखिरी हिस्सा.
2: Overseas release by Z Studios.
6: दिन भर दे कम्मा कारां च घर पैसे भेजना शामिल करना चाहते हो, जिंदगी तुहानू चाहे जिथे भी ले जावे, वर्ल्ड रेमिट नाल तुसी अपने फोन तो ही जल्दी ते सुरक्षित पैसे भेज सकते हो, वो भी वधिया रेटां ते घट फीसा नाल. सब तो रुझेवे वाले दिनां च भी तुहाडे अपणियां दा साथ निभाउणा हुण बहुत आसान है. अज ही वर्ल्ड रेमिट ऐप डाउनलोड करो अते हर ट्रांसफर नाल अपने घर दे होर नेड़े महसूस करो.
7: हुण तुहाडे मोढे नाल मोढा मिला के तुहाडी तरक्की दी राह नूं होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा.
8: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज. तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानूं हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तों वेरी बी टोयोटा दे नाल.
7: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस.
9: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो.
10: ओ जो हुकम मेरी सरकार.
9: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
10: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच.
9: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे.
10: आहो जी आहो,
9: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच.
11: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर, सिद्धे आओ आईएमई एडवाइजर. अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा जां स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस. आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर. कॉल 02-9063-1618. हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर.
0: This station is now the ultimate power in the universe.
1: Radio Haji 1674.

पुराने दिन फिल्म आ रही है पहला प्यार दूसरी बार, सो वैसे मैनू लगता है कि फिल्म भी दूजी बार ही आ रही है। एक होर टाइम हुंदा सीगा, एक होर टाइम हैगा, यह जी फिल्म बार बार बार बार बार बार मैडॉक फिल्म बस करो आए लव रंजन दी। वेलकम टू रेडियो, हाँ जी 1674 एम दे उत्ते ड्राइव बैक शो तुहाडे तक लैके आए जी। सो बैक टू बैक गाने हैगे ने और बैक टू बैक गाणियां दे नाल नाल अज दे होण वाले शोज़ की जानकारी ते होर भी कुछ इधर उधर दियां गल्लां तुहाडे नाल सांझियां करांगे। इस हफ्ते शुक्रवार दे दिन इन्ने ज़्यादा सोंगस रिलीज़ नहीं सी होए, पर हुण एक तो बाद एक सोंगस आ रहे हैगे ने, ते वाई नॉट दिस फ्राइडे। सो मंगलवार का दिन हैगा अज, हाँ मंगलवार का दिन है जी। ते प्रोग्राम केड़ा भला प्रोग्राम हैगा अज, इनसाइट रिपोर्ट, हाँ मैं किमें भुल सकता, मैं आप ही तक प्रोग्राम करना अगले 5 बजे तक वह प्रोग्राम तक लैके आना है।

धड़ाक फिल्म लेके आ रहे ने हरदीप गरेवाल, गाना भी नवा सुनी लन्ने फिर।

देखो मैं ये दो तीन चीजा इतराज ने यूट्यूब ते पाया है ना ने गाना सुतरी सरजीत भुल्लर ते सरगी मान ने सरगी मान की आवाज वधिया कोई शक नहीं हैगा वधिया गाने गाते ने ते ये थोड़ा चकमा जिहा लिरिक्स हैगा ते बिट्टू चीमा कौन है दस देना चाहिए है भी यह जहाँ काली चीज खाली ये वो फलाना तिमका उहदे नाल मोहाली रलान दे लई ठीक है नॉट ठीक दूजी चीज ये गाना जिहड़ा उहदे ते पाया ना यूट्यूब ते इहदे ते फीमेल मॉडल का नाम तो पाता पर मेल मॉडल भी हैगा उहदा नाम पाया नहीं हैगा सो यू क्लीयरली सी के किस पासे नूं किदां इहनां ने लैणे हुंदे ने इहनां दे व्यूज वगैरह एनीवेज आई पॉप स्टार की गल की सी मैं तो दो तीन दिन पहला तो गार्की ने जिन्ना वधिया गाना गाया सी चार खपित्र वैसे दोबारा सुना देंगे मैं आई कैन हीयर दैट सोंग अगेन पर एक होर मुंडा वायरल हो रहा अनमोल सलाह इजिप्ट आला मुहम्मद सलाह नहीं ये अनमोल सलाह है जुदाई गाना

0: imagination is now the ultimate power in the universe.
1: Radio Haji 1674.
2: Star Studio 18 and Panorama Studios Production presents.
3: मेरी बेटी के लिए justice चाहिए.
4: मुझे justice नहीं, बदला चाहिए.
2: Drishyam The Conclusion, starring Ajay Devgan, Tabu, Shreya Saran, Jaydeep Alawat, and many more.
5: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा? बताना मुश्किल है.
2: The end we've been waiting for. Drishyam The Conclusion in cinema 2nd October.
5: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है. आखिरी हिस्सा.
2: Overseas release by Zee Studios.
6: Australia vich immigration da masla. Na jao idhar udhar. Sidhe aao IME advisor. Apni maan boli vich samjhan tuhadi lod nu. Nale varyan to skill visa. 186, 189, 190, 482 te 491. Skill assessment, partner visa, parent visa, cha student visa to PR tak. Har immigration process layi expert guidance. Aaj hi parose naal sampark karo. IME advisor. Call 02-9063-1618. Hun पैरामेटा सिडनी अति न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर
7: सुनो जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वल ले लो
8: ओ जो हुकम मेरी सरकार
7: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वल जाना तुसी आ किथे जा रहे हो
8: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स टंच
7: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अति बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे
8: आहो जी आहो
7: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 Garfield Road, East Riverston, which we tuhadi seva vich.
9: Diwali, roshni ka tyohar. To chalo, shaan ke saath zaike se lagayein. Isme char chaand, rivazon ke rang, khano ka swaad aur Diwali ka ehsaas rakhein barqarar. Apni thali ko banayein khaas shaan ke veg biryani, chana masala, palak paneer, kitchen king, dal masala, chaat masala aur dheron masalon ki range ke saath. Is Diwali खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हाँ जी हाँ जी
1: रेडियो हाँ जी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।
2: आपकी खिदमत में मैं अपनी चंद गजलें पेश करने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है।

0: स्टूडियो 18 एंड पेनोरमा स्टूडियोस प्रोडक्शन प्रेजेंट।
1: नहीं बेटे के लिए जस्टिस चाहिए।
2: मुझे जस्टिस नहीं, बदला चाहिए।
0: दृश्यम द कंक्लूजन स्टारिंग अजय देवगन, तबू, श्रिया सरन, जयदीप अलावर एंड मेनी मोर।
3: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है।
0: The end we've been waiting for. Drishyam the conclusion in cinema 2nd October.
3: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा बाकी है।
0: Overseas release by Zee Studios.
4: This station is now the ultimate power in the universe.
5: Radio Haji 16748.

0: ਸੁਣੋ ਜੀ, ਗੱਡੀ ਅਕਸ਼ਾ ਜੂਲਰਸ ਵੱਲ ਲੈ ਲਓ।
1: ਜੋ ਹੁਕਮ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ।
0: ਉਹ ਆ ਕਿੱਧਰ? ਹੈਰੀ ਸਪਾਰਕ ਵੱਲ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ?
1: ਅਕਸ਼ਰਾ ਜੂਲਰਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
1: आहो जी आहो।
0: अक्षर ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच। ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना, जाओ इधर उधर, सीधे आओ आईएमई एडवाइजर। अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जो स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक, हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02906316 18, हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।
2: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
4: हाँ जी हाँ।

0: अच्छा बारी बरसी खटन कैसी मरूदा हौली हौली नचवे गाव्या गाव्या हौली हौली नचवे बल बल बल बल बल
1: नच भी नहीं हुंदा
0: नहीं नहीं
1: ओ, ओ रेंदा
0: ओ बड़ा सोना
1: गोल गोल है ओके तो रेंदा ही
0: निकल उन व्याह तक आप कर देना सही कोई नहीं टेंशन ना लो दही
1: उन्हें हॉस्पिटल लेके जाओ उन्हें उन्हें लाट दियो उन्हें बाद दियो तो उन्हें बुथा दियो
0: ओके ठीक है बुथा देने लो
1: सोक आंटी कित
0: अगले हफ्ते आंदे फिर पुछांगे उन्हें ठीक है ओके थैंक यू
1: हो राशना गल कर लो
0: हां जी करा दो
1: सशीकाल अंकल जी ते कोई भी नहीं
0: सासरीकाल एशलिन की हाल है
1: ठीक है तोड़ा की हाल है
0: मेरा भी ठीक है तू ही जदों पूछते हो ते मेरा फिर पेट और बढ़िया हो जाता दीदी रोला पाउंदे दीदी नूं समझा लिया करो अच्छा क्रोकोडाइल दीदी ने शूज लाए होने ना क्रोकोडाइल वाले
1: हाथी
0: वर्गे ते बड़े खतरनाक चीजां लिया दीदी ने ओहो की सुनाओगे फिर
1: मैं एक बुजाल सुनानी जेडी तुसी हेल्प नहीं ले सकदे
0: ओके
1: अकेली चीज है जेडी पच भी सकदी रख भी सकदी हार्ड भी हो सकदी सॉफ्ट भी हो सकदी ते ठंडी भी हो सकदी ते गर्मी हो सकदी
0: इन्ना कुछ है हां
1: हां जी
0: रोटी
1: है?
0: रोटी
1: नहीं
0: साग
1: ओ पच नहीं सकदी
0: अच्छा ओके है? साग नहीं पच सकदी
1: साग खाए
0: ता खा के ते बंदा भजूगा
1: ते वाली चीज है
0: अच्छा पीने वाली चीज है ओके पीने वाली चीज है लस्सी
1: नहीं मीठा नहीं है
0: मीठा नहीं है लून वाली लस्सी
1: नहीं
0: ओके पानी
1: हां जी
0: ओ अच्छा सच्ची पानी है
1: हां जी
0: ओ अच्छा वाटर है
1: हां जी
0: ओ भाई जीत गया थैंक यू एजली
1: वीर जी ना गल कर लो
0: ओ वीर जी किथे वीर जी अंकल जी ते कोई भी दीदी निकर हैगी नहीं
1: नहीं
0: ओ यार अमरूद नूं फुल्लां वाली निकर बड़ी पसंद आ
1: ओके
0: किन्ने दिनां दा कहण
1: दा पिछे दी है एलीगेटर मगर पिछे वाली है एलीगेटर
0: अच्छा एलीगेटर वाली है
1: हां जी
0: ओके तो एलीगेटर वाली निकर के ते खा ना ना जावे अमरूद नु हां
1: हां जी ते जद चतुरसी चाती दीदी ना गाल कर देते सी मम्मा मम्मा पारे सी
0: अच्छा
1: रे मम्मा दी बात कर ते वजी
0: मेनू पता लग गया ही तुसी दोवें जने भंगड़ा पाउंदे ही पिछे वीर जी तुही भी भंगड़ा पाउंदे हो पिछे
1: गड्डी खराब होई फिर है क्यों है,
0: क्यों हुई पता नहीं यार, तुही दसा करो क्यों होंगी है। मैं लगता जाली लोग है ना,
1: जाली लोग,
0: हाँ जाली, हाँ जाली लोग है, गड्डी नहीं साफ रखते अपनी ना।
1: फाइनली ट्रक नहीं खराब होया,
0: हाँ ट्रक नहीं खराब होया, ये गुड हो गया
1: कम। हाँ जी,
0: ट्रेन चल गई है, ओके गुड।
1: हाँ जी, ट्रक हाँ सियाने हो गए,
0: हाँ ट्रक भी सियाने हो गया, हाँ ट्रक भी ब्याह देने आप भी सियाने हो गए। हाँ जी,
1: एक सी राजा एक सी रानी दोनों
0: बाल
1: के खत्म
0: कहानी जब
1: बले बले शावा शावा तो पता हम रानी की होती रानी हम क्वीन होता ते हम राजा किंग होता।
0: ओके ओके, वो जेड़े किंग नू मैं मिलन जाना ना। ओके मर गए थैंक यू वीर जी,
1: बल्ले बल्ले
0: बल्ले बल्ले, जिंदाबाद
1: अंकल जी, जिंदाबाद।
0: ओ थैंक यू सरदार जी।
1: मैं आंटी जी नु फाइन किता बहुत ज्यादा।
0: हां बढ़िया, वे आंदे आ ना आंटी जी ते उनां नु आपा फाइन दे देना।
1: ओके
0: ठीक है, थैंक यू सरदार।
1: कली स्टिल पांच जप्पी दे दी।
0: ओए होए होए होए होए होए होए, ये ते बड़ा बढ़िया फाइन है। बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट साडे नाल ने पई 006, तुसी आउणे रहो जी, 006 तुसी आउणे रहो। सत श्रीकाल, कौन बोल रहा?
2: जिंद।
0: ओ जिंद कौर, की हाल है तोड़ा?
2: वधिया।
0: वधिया?
2: की हाल है?
0: मेरा भी ठीक है। तुई मेनू लगदा वावा वड्डे हो गए हो, तुई ते
2: हैं,
0: तुई ते मेनू लगदा बिग हो गए हुण।
2: हां
0: जी। किन्ने बिग हो गए हो?
2: 7
0: भी हो गए? सच्ची? वाह, तुम तो फिर बहुत वड्डे हो गए हो। ते आ कौन लगे रोंदा, कौन है?
2: सुरबत।
0: ओए की गल, रुके हो रोंदा?
2: सुरबत के दिल तले डग गए।
0: की डग गए?
2: सुरबत के पत्ते तले डग गए।
0: पत्ते?
2: हां जी।
0: केड़े पत्ते?
2: हैं,
0: उन्हें पत्ते पत्ते तोड़ के फड़े ही हाथ च।
2: स्कूल
0: तुरी जांदी सी। ओके की सुनाओगे फिर? एक गाना। ओके
2: चिड़िया चक्कर नैया मेरे तेरे रे बाबरा करके जाऊं तक मेरी तेरे रे बाबरा तीन हो रे बताया असि तेरे हसीया लोका ने ता ऐवी बस गल्ला भी बनाया लोका वाके है नी तेरे जेरे रे बाबरा चिड़िया चक्कर नैया मेरे तेरे ए बाबला करके जाऊं तक वीर तेरे ए बाबला सादिया भी उमरा जान तेनु लगवे जीने वेख ले होना तेरे रब वे। म्यूजिक हो गया।
0: वेरी नाइस, हां ते बहुत सोना है। थैंक यू जिंद। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੁਣਾਇਆ ਵਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ ਬੁੱਤੋ
2: ਬਾਏ
0: ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪੱਤੇ ਦਵਾ ਦਿਓ ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਸ ਕੌਰ ਹੋਊਗੀ ਭਾਈ ਅਸੀਸ ਕੌਰ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਵਿਹਲੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਸੀਸ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਸੀਸ ਕੌਰ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ
1: ਠੀਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ
0: ਮੈਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ
1: ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਕੂਲ
0: ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ
1: ਓ ਮਮਾ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ
0: ਅੱਛਾ ਮਮਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ
1: ਨਹੀਂ
0: ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ ਤੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ
1: ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਰੂ
0: ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਗਾਈਡ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਓਹੋ ਮਮਾ ਗਲਤ ਮੁੜ ਚੱਲੇ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋ
1: ਨਹੀਂ
0: ਹੂੰ
1: ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਸਕੂਲ ਕਿੱਥੇ ਆ
0: ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾਲ ਸਿੰਗਲ
1: ਡੇ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ
0: ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਫਿਰ
1: ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਮਜ਼ੇ ਲੈਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ
0: ਓਏ ਹੋਏ ਓਏ ਹੋਏ ਕਿਹੜੇ ਮਜ਼ੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀ ਵਧੀਆ
1: ਬੈਠੋ ਬਸ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਵਿਊ
0: ਓਏ ਹੋਏ ਆਸ-ਪਾਸ ਵੇਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ
1: ਯਾ
0: ਗੁੱਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਸੁੱਖ ਸੁੱਖ ਆਂਟੀ ਦਾ ਅੱਜ ਬਰਥਡੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ
1: ਸੁੱਖ ਆਂਟੀ ਦਾ ਬਰਥਡੇ
0: ਆ ਹੁਣੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਜਸਵਾਲ ਅੰਕਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ
1: ਵਾਟ
0: ਹਾਂ ਵੇਖ ਲਓ
1: ਓਕੇ
0: ਯੇ ਵਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਫਿਰ
1: ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਗਰਲ
0: ਹੈ

0: हाँ भाई सिडनी वालियो, तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी।
1: This autumn, laugh out loud with Ayushman Khurana and Saad Ali Khan in Urda Teer.
2: Ek Pakistani jasoos Hindustan jayega.
3: Desh bhakti to yaad aa gayi.
4: Desh kaun sa hai? Ye bhul gaya.
1: A spy mission gone wrong with hilarious moments.
5: Woh ye border chal rahi hai?
1: Nahi ji, ye to Urda Teer chal raha hai. From October 9th at cinemas near you.
6: Yaar tu itthe niche thi aake pakka bhi ho gaya. Ki jugaad laya hai?
7: Jugaad nahi, ye hai 8 saalan to vi vadda tajurba Bansal immigration da, jinna ne vadiya course vich admission karai ate फिर मेनू PR दी राह भी विखाई। इन्ना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, AAT अपील्स, स्किल्ड वीजा, PR, US विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
6: नंबर दा दे बांसल इमिग्रेशन वालियां दा।
7: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
8: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना, जाओ इधर उधर, सीधे आओ IME एडवाइजर। अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू, नाले वरियां तो स्किल्ड वीजा 186 189, 190, 482 ते 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, चाहे स्टूडेंट वीजा तो PR तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो IME एडवाइजर, कॉल 02-9063-1618। हुन पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी IME एडवाइजर।
9: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वल ले लो।
10: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
9: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
10: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्सटंच,
9: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
10: आहो जी आहो,
9: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटंच विच वी तुहाडी सेवा विच।
11: दिवाली रोशनी का त्योहार, तो चलो शान के साथ जायके से लगाएं इसमें चार चांद। रिवाजों के रंग, खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार। अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी, चना मसाला, पालक पनीर, किचन किंग, दाल मसाला, चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ। इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ।
8: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना, जाओ इधर उधर, सीधे आओ IME एडवाइजर। अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू, नाले वरियां तो स्किल्ड वीजा 186 189 190 482 ते 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, चाहे स्टूडेंट वीजा तो PR तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो IME एडवाइजर, कॉल 02-9063-1618। हुन पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी IME एडवाइजर।
12: दिन भर दे कम्मां कारां च घर पैसे भेजना शामिल करना चाहुंदे हो? जिंदगी तुहानू चाहे जिथे भी लै जावे, वर्ल्ड रेमिट नाल तुसी अपने फोन तो ही जल्दी ते सुरक्षित पैसे भेज सकते हो, वह भी वधिया रेटा ते घट फीसा नाल। सब तो रुझेवे वाले दिनां च भी तुहाडे आपणियां दा साथ निभाउणा हुण बहुत आसान है। अज ही वर्ल्ड रेमिट ऐप डाउनलोड करो अते हर ट्रांसफर नाल अपने घर दे होर नेड़े महसूस करो।
9: हुण तुहाडे मोढे नाल मोढा मिला के तुहाडी तरक्की दी राह नूं होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरीबी टोयोटा।
13: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानूं हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई, जो ने एक दहाके तों वेरीबी टोयोटा दे नाल।
9: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड, हॉपर्स। Crossing, very be Toyota, the smart choice.

0: ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਪਤਾ ਫੇਰ ਕਿਹੜਾ ਰੇਡੀਓ ਵੱਜਦਾ।
1: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
2: Radio Hanji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station. Radio Hanji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station.
3: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
4: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
3: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
4: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
5: This autumn, laugh out loud with Ayushman Khurana and Saad Ali Khan in Urda Teer.
6: Ek Pakistani jasoos Hindustan jayega.
7: Desh bhakti to yaad aa gayi.
8: Desh kaun sa hai? Ye bhul gaya.
5: A spy mission gone wrong with hilarious moments.
9: Udhe ek border chal rahi hai.
5: Nahi ji, ye to Urda Teer chal raha hai. From October 9th at cinemas near you.

दिवाली रोशनी का त्योहार, तो चलो शान के साथ जायके से लगाएं इसमें चार चांद। रिवाजों के रंग, खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार। अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी, चना मसाला, पालक पनीर, किचन किंग, दाल मसाला, चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ। इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच। ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना, जाओ इधर उधर, सिद्धे आओ आईएमई एडवाइजर, अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जां स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक, हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस, आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02-9063-1618, हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।
2: रेडियो हाँ जी 1674 AM।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना, जाओ इधर उधर, सीधे आओ आईएमई एडवाइजर। अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186-189-190-482-491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जां स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02-9063-1618। हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी IME Advisor।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

हाय, मैं हूं कपिल शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। और ये जिनको जिन्होंने रेडियो ये खोला है वो मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे गाने चलाएंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो भी चलाएंगे बहुत अच्छा चलाएंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। थैंक यू।

0: जी हाँ जी 1674।
1: आजा प्यार की होड़ी
2: दिल बोले तो
3: हाट हाट
4: हवा यार सौदा सौदा
3: ओहो
1: दोनों डील

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: This autumn, laugh out loud with Ayushman Khurana and Saad Ali Khan in Urda Teer.
3: Ek Pakistani jasoos Hindustan jayega.
4: Desh bhakti to yaad aa gayi.
5: Desh kaun sa hai? Ye bhul gaya.
2: A spy mission gone wrong with hilarious moments.
6: Ye border chal rahi hai?
2: Nahi ji, ye to Urda Teer chal raha hai. From October 9th at cinemas.

हाय ऑस्ट्रेलिया, हाय मेलबर्न, मैं आपका माधवन बोल रहा हूँ यानी कि मैडी, और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM।

0: This station is now the ultimate power in the universe.
1: Radio Haji 1674.
2: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
3: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
2: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
2: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
3: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स तंच विच वी तुहाडी सेवा विच। हुन थोड़े मोटे नाल मोड़ा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
4: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन ले, जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
2: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट चॉइस।

स्विंग ग्रोवर, स्विंग ग्रोवर, हांजी हांजी, 1674 ये नहीं है 71-72, ये है 1674, ये है 1674, सुनते रहो हांजी AM।

0: You are listening.
1: Haji Haji, Haji Haji, Haji Haji. Radio Haji.
2: Radio Haji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station.
1: Radio Haji.
0: Stay tuned.
3: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर सिद्धे आओ आईएमई एडवाइजर अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड़ नू नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491 स्किल असेसमेंट पार्टनर वीजा पेरेंट वीजा जा स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर कॉल 02-9063-1618 हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर
4: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया की जुगाड़ लाया है
5: जुगाड़ नहीं ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमिग्रेशन दा जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई एना ही नहीं ए स्टूडेंट वीजा एएटी अपील्स स्किल्ड वीजा पीआर यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने
4: नंबर ता दे बंसल इमिग्रेशन वालियां दा
5: हां जी अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: हाँ भाई सिडनी वाले हो, तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी।
1: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
2: और जो हुकम मेरी सरकार।
1: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
2: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
1: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
2: आहो जी आहो,
1: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
4: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
3: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
4: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: स्टार स्टूडियो 18 एंड पैनोरमा स्टूडियोस प्रोडक्शन प्रेजेंट।
1: मेरी बेटी के लिए जस्टिस चाहिए।
2: मुझे जस्टिस नहीं, बदला चाहिए।
0: दृश्यम द कंक्लूजन स्टारिंग अजय देवगन, तबू, श्रिया सरन, जयदीप अलावर एंड मेनी मोर।
3: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है।
0: The end we've been waiting for. Drishyam the conclusion in cinema 2nd October.
3: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा बाकी है।
0: Overseas release by Zee Studios.
4: Chill out, so drop it low.

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: Hi, hello, this is Ali Asghar here on Radio Haji 1674 AM. सुनते रहिए, सुनाते रहिए, बजाते रहिए, जो करना है करिए।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: सत श्री अकाल टू ऑल द रेडियो हांजी लिसनर्स।

0: Star Studio 18 and Panorama Studios production present.
1: नहीं बेटी के लिए जस्टिस चाहिए.
2: मुझे जस्टिस नहीं, बदला चाहिए.
0: दृश्यम द कंक्लूजन स्टारिंग अजय देवगन, तबू, श्रिया सरन, जयदीप अलावर एंड मेनी मोर.
3: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है.
0: The end we've been waiting for. दृश्यम द कंक्लूजन इन सिनेमा 2nd अक्टूबर.
3: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा बाकी है.
0: Overseas release by Zee Studios.
4: Hi, this is Ayushman Khurana and you're listening to Radio Hanji.

0: Radio Hanji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station.
1: दिन भर दे कम्मा कारां च घर पैसे भेजना शामिल करना चाहते हो, जिंदगी तुहानू चाहे जिथे भी ले जावे, वर्ल्ड रेमिट नाल तुसी अपने फोन तो ही जल्दी ते सुरक्षित पैसे भेज सकते हो, वह भी वधिया रेटा ते घट फीसा नाल। सब तो रुझेवें वाले दिनां च भी तुहाडे अपणियां दा साथ निभाउणा हुण बहुत आसान है। अज ही वर्ल्ड रेमिट ऐप डाउनलोड करो अते हर ट्रांसफर नाल अपने घर दे होर नेड़े महसूस करो।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी रेडियो हांजी
2: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हाय, दिस इज उमंग कुमार और प्यार से लोग मुझे ओके कहते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। कीप लिसनिंग।

दिवाली रोशनी का त्योहार, तो चलो शान के साथ जायके से लगाएं इसमें चार चांद। रिवाजों के रंग, खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार। अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी, चना मसाला, पालक पनीर, किचन किंग, दाल मसाला, चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ। इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ।

0: मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तों वेयर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट चॉइस।

0: दिवाली रोशनी का त्योहार, तो चलो शान के साथ जायके से लगाएं इसमें चार चांद। रिवाजों के रंग, खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार। अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी, चना मसाला, पालक पनीर, किचन किंग, दाल मसाला, चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ। इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ।
1: This station is now the ultimate power in the universe.
2: Radio Haji 1674.

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन का, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हां जी हां जी, ओए हां जी हां जी,
3: हां जी रेडियो।

0: तैनू ओदे नाल मिलाउण आया सी। मैं ते बस अपनी दोस्ती निभाउण आया सी। मैं ते बस अपनी दोस्ती निभाउण आया सी।
1: Hi, this is Imran Hashmi and you're listening to me on Radio Haji

दिन भर दे कम्मा कारां च घर पैसे भेजना शामिल करना चाहते हो, जिंदगी तुहानू चाहे जिथे भी ले जाए, वर्ल्ड रेमिट नाल तुसी अपने फोन तो ही जल्दी ते सुरक्षित पैसे भेज सकते हो, वह भी वधिया रेटा ते घट फीसा नाल। सब तो रुझेवे वाले दिनों च भी तुहाडे अपणियां दा साथ निभाउणा हुण बहुत आसान है। अज ही वर्ल्ड रेमिट ऐप डाउनलोड करो, हर ट्रांसफर नाल अपने घर दे होर नेड़े महसूस करो।

0: हाँ भाई सिडनी वालों, तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी
1: हांजी। हे मैन सतबीर औजला गीत MP3
2: सारा शहर हमें लॉइन के नाम से जानता है। मोना डार्लिंग।

0: सिडनी वाले हो तुसी सुन रहे हो अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी 1674 AM रेडियो
1: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया की जुगाड़ लाया है
2: जुगाड़ नहीं ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमिग्रेशन दा जिन्ना ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई एना ही नहीं ए स्टूडेंट वीजा एटी अपील्स स्किल्ड वीजास पीआर यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने
1: नंबर दा दे बंसल इमिग्रेशन वालियां दा
2: हां जी अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406 660 960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: गौड़ी सुखमी महला पंजवा सुखमी सुख अमृत प्रभ नाम भत जना कै मन विश्राम सलोक एक ओंकार सतगुर प्रसाद
1: आद गुर ए नमै जुगाद गुर ए नमै सतगुर ए नमै श्री गुरुदेव ए नमै
0: सतनाम श्री वाहिगुरु अष्टपदि सिमरो सिमर सिमर सुख पावो कल कलेश तन माहे मिटावो
1: सिमरो जस प्रसंबर एक है नाम चबत अगनत अनेक है
0: वेद पुराण सिमर सदाखर कीने राम नाम एक अखर
1: जिनकै जीव सावै ताकी महिमा गनी न आवै
0: कांखी एक है दर्श तुहारो नानक कुण संग मोहे उधारू
1: सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम रहाओ
0: प्रभ कै सिमरन गर्भ नवसै प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै
1: प्रभ कै सिमरन काल पर हरै प्रभ कै सिमरन दुश्मन टरै
0: प्रभ सिमरत काछ बिघन लागै प्रभ कै सिमरन आंदन जागै
1: प्रभ कै सिमरन भव न व्यापै प्रभ कै सिमरन दुख न संतापै
0: प्रभ कै सिमरन सार कै संग सर्व निधान नानक हर रंग
1: प्रभ कै सिमरन सिद्ध नौ नित प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध
0: प्रभ कै सिमरन जपता पूजा प्रभ कै सिमरन बिनसै दूजा
1: प्रभ कै सिमरन तीर्थ स्नानी प्रभ कै सिमरन दरगाह मानी
0: प्रभ कै सिमरन होय सो भला प्रभ कै सिमरन सो फल फला
1: श्री सिमरै जिने आप सिमराए नानक ताकै लागो पाए
0: प्रभ कै सिमरन सब ते ऊंचा प्रभ कै सिमरन उदरे मूचा
1: प्रभ कै सिमरन तिसना बुझै प्रभ कै सिमरन सब के सूझै
0: प्रभ कै सिमरन नाहीं जम तरसा प्रभ कै सिमरन पूर्ण आसा
1: प्रभ कै सिमरन की मल जाए अमृत राम रिद महे समाए
0: प्रभ जी बसै साध की रसना नानक जन का दासन दसना
1: प्रभ को सिमरै सी धनवंते प्रभ को सिमरै सी पतवंते
0: प्रभ को सिमरै सी जन परवान प्रभ को सिमरै सी पुरख प्रधान
1: प्रभ को सिमरै सी बेमुहताजे प्रभ को सिमरै सी सर्व के राजे
0: प्रभ को सिमरै से सुखवासी प्रभु को सिमरै सदा अविनाशी
1: सिमरन ते लागे जिन आप दयाला नानक जन की मंगे रवाला
0: प्रभु को सिमरै से पर उपकारी प्रभु को सिमरै तिन सद बलिहारी
1: प्रभु को सिमरै से मुख सुहावै प्रभु को सिमरै तिन सुख बिहावै
0: प्रभु को सिमरै तिन आत्म जीता प्रभु को सिमरै तिन निर्मल रीता
1: प्रभु को सिमरै तिन अंध घनेरे प्रभु को सिमरै बसे हर नेरे
0: संत कृपा ते अंधन जाग नानक सिमरन पूरै भाग
1: प्रभु कै सिमरन कारज पूरै प्रभु कै सिमरन कबू न जूरै
0: प्रभु कै सिमरन हर गुण बानी प्रभु कै सिमरन सहज समानी
1: प्रभु कै सिमरन निचल आसन प्रभु कै सिमरन कमल विगासन
0: प्रभु कै सिमरन अनहर चुनकार सुख प्रभु सिमरन का अंत न पार
1: सिमरै से जन जिन को रूप मैया नानक तिन जन सरनी पया
0: हर सिमरन कर भत प्रगटाए हर सिमरन लग बेद उपाए
1: हर सिमरन पैसे जति दाते हर सिमरन नीचो कुण जाते
0: हर सिमरन धारी सब धरना सिमर सिमर हर कारण करना
1: हर सिमरन क्यों सगल अकारा हर सिमरन मैं आप निरंकारा
0: कर कृपा जिसे आप बुझाया नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया
1: सुख मनी सुख अमृत पब नाम भगत जना कै मन विश्राम अठ इक श्लोक
0: दीन दर दुख भंजना घट घट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभ साथ सत नाम श्री वाहिगुरु अष्टपदी
1: या मात पिता सतमीत ना भाई मन उहा नाम तेरा संग सहाय
0: जह महा भयान दूत जम दल तह केवल नाम संग तेरा चले
1: जह मुश्किल होवे अत भारी हर को नाम खिन माहे उधारी
0: अनक पुनः चरण करत नीता रह हर को नाम कोट पापर हरे
1: गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पावो सुख गनेरे
0: सगल सृष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जपत हि सुखिया
1: लाख करोड़ी बंधन पर हर का नाम जपत निस्तर
0: अनक माया रंग तिखना बुझावै हर का नाम जपत आगावै
1: ये मार्ग हो जात गीला ते हर नाम संग होत सुहेला
0: ऐसा नामन सदा ध्याइए नानक गुरमुख परमगत पाइए
1: सूटत नाही को लखबाही नाम जपै ते पार पराही
0: अनक बगन जह आए संघारै हर का नाम तत्काल उधारै
1: अनक जून जन्मै मर जाम नाम जोत पावै विश्राम
0: हौ मैला मल कबहु ना धोवै हर का नाम कूट पाप होवै
1: ऐसा नाम जपो मन रंग नानक पाइए साधकै संग
0: जिह मार के गन जाहे न पूसा हर का नाम उहा संग तोसा
1: जै पेंडे महा अंध गुबारा हर का नाम संग उजियारा
0: जहां पंथ तेरा को न सुजानू हर का नाम तह नाल पछानू
1: जा महा बयान तप प्रोग्राम ते हर के नाम की तू ऊपर छाम
0: जहां तिरखा मन तुझ आ करखै तह नानक हर हर अमृत बरखै
1: भगत जना की बरतन नाम संजना कै मन विश्राम
0: हर का नाम दास की ऊट हर कै नाम उधरे जन कोट
1: हर जस कर सन दिन रात हर हर औखत साध कुमार
0: हर जन कै हर नाम निदान पार ब्रह्म जन की नो दान
1: मन तन रंग रते रंग एक है नानक जन कै बिरद विवेक है
0: हर का नाम जन को मुक्त जोत हर कै नाम जन को तृप्त भोगत
1: हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत का परे न भंग
0: हर का नाम जन की वडियाई हर कै नाम जन शोभा पाई
1: हर का नाम जन को भोजो हर नाम जपत कछ न है बिजो
0: जन राता हर नाम की सेवा नानक पूजै हर हर देवा
1: हर हर जन के माल खजीना हर धन जन को आप प्रभ दीना
0: हर हर जन कै ओट सतानी हर प्रताप जन अवर न जानी
1: ओत पोत जन हर सराते सुन समाद नाम रसमाते
0: आठ पहर जन हर हर जपै हर का भत प्रगट नी छपै
1: की भगत मत पौ करै नानक जन संकेते तरै
0: पार जात एहो हर को नाम काम तिन हर हर गुण गाम
1: सब ते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लथा
0: नाम की महिमा संत रिदवसै संत प्रताप दुर सब नसै
1: संत का संग उड़ भागी पाई है संत की सेवा नाम धियाई है
0: नाम तुल का छबर न होए नानक गुरमुख नाम पावै जन कोए
1: सुखमनी सुख अमृत पव नाम भगत जना कै मन विश्राम अठ दो श्लोक
0: बहु शास्त्र बहु सिमृति पेखे सर्व टंडोल पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल सत नाम श्री वाहिगुरु अष्टपदी
1: आप ताव ज्ञान सब ध्यान खर शास्त्र सिमृत वख्यान
0: योग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया सगल त्याग मन मध्य फिरे ਕਿਰਿਆ
1: ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਹੈ ਬਹੁ ਜਤਨਾ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਹੋਮੈ ਬਹੁ ਰਤਨਾ
0: ਸਰੀਰ ਕਟਾਏ ਹੋਮੈ ਕਰ ਰਾਤੀ ਵਰਤ ਨੇਮ ਕਰੈ ਬਹੁ ਭਾਂਤੀ
1: ਨਹੀਂ ਤੁਲ ਰਾਉ ਨਾਮ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨੂ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਇੱਕ ਵਾਰ
0: ਨੌ ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਮੀ ਫਿਰੈ ਚਰ ਜੀਵੈ ਮਹਾ ਉਦਾਸ ਤਪੀਸਰ ਥੀਵੈ
1: ਅਗਨ ਮਾਏ ਹੋ ਪ੍ਰਾਨ ਕਨਕ ਅਸ ਹੈ ਬੁਰਦਾਨ
0: ਨਿਉਲੀ ਕਰਮ ਕਰੈ ਬਹੁ ਆਸਨ ਜੈਨ ਮਾਰਗ ਸੰਯਮਤ ਸਾਧਨ
1: ਨਿਮਕ ਨਿਮ ਕਰ ਸਰੀਰ ਕਟਾਵੈ ਤੋ ਵੀ ਹੋਮੈ ਮੈਲ ਨਾ ਜਾਵੈ
0: ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਸੰਸਰ ਕਛ ਨਾਹੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪਤ ਗਤ ਪਾਹੇ
1: ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਤੀਰਥ ਦੇ ਛੁਟੈ ਗਰਭ ਗੁਮਾਨ ਨਾ ਮਨ ਤੇ ਹੁਟੈ
0: ਸੋਚ ਕਰੈ ਦਿਨ ਸਾਰ ਰਾਤ ਮਨ ਕੀ ਮੈਲ ਨਾ ਤਨ ਤੇ ਜਾਤ
1: ਦੇਹੀ ਕੋ ਬੋ ਸਾਧਨਾ ਕਰੇ ਮਨ ਤੇ ਕਬੂ ਨੂੰ ਵਿਖਿਆ ਟਰੈ
0: ਜਲ ਤੋ ਵੈ ਬਹੁ ਦੇਹ ਅਨੀਤ ਸੁਧ ਕਹਾ ਹੋਏ ਕਾਚੀ ਭੀ
1: ਮਨ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਊਚ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਉਦਰੇ ਪਤਤ ਬਹੁ ਮੂਚ
0: ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਜੰਕਾ ਭਾਉ ਵਿਆਪੈ ਅਨਕ ਜਤਨ ਕਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਧਰਾਪੈ
1: ਏਕ ਅਨੇਕ ਗੰਨੀ ਬੂਜੈ ਕੋਟ ਪਾਵ ਦਰਗੈ ਨੀ ਸਿਜੈ
0: ਛੂਟ ਸਨਾਹੀ ਊਬ ਪਾਇਆਲ ਮੋਹੇ ਵਿਆਪੈ ਮਾਇਆ ਜਾਲ
1: ਅਵਰ ਕਰ ਤੂ ਸਗਲੀ ਜਮਡਾਨੈ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨ ਤਿੰਨੀ ਮਨ
0: ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਦੁਖ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਬੋਲੈ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ
1: ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਗੈ ਸਾਜਨਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੈ
0: ਜੇ ਕੋ ਆਪਣਾ ਦੁਖ ਮਿਟਾਵੈ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਸਦ ਗਾਵੈ
1: ਜੇ ਕੋ ਆਪਣੀ ਸੁਭਾ ਲੋਰੇ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਇਹ ਹੋ ਮੈਂ ਛੋਰੇ
0: ਜੇ ਕੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਡਰੈ ਸਾਜਨਾ ਕੀ ਸ਼ਰਨੀ ਪਾਰੈ
1: ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੋ ਪਵ ਦਸ ਪਿਆ ਸਾ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੈ ਬਲ ਬਲ ਜਾ ਸਾ
0: ਸਗਲ ਪੁਰਖ ਮੈਂ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾਕੈ ਮਿਟੈ ਬਿਮਾਨ
1: ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਜਾਣਾ ਨੀਚਾ ਸੋ ਉਗਨੀਏ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ
0: ਜਾਕਾ ਮਨ ਹੋਏ ਸਗਲ ਕੀਰੀਨਾ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤਿਨ ਘਟ ਘਟ ਚੀਨਾ
1: ਮਨ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬੁਰਾ ਮਟਾਨਾ ਪੇਖੈ ਸਗਲ ਸਿਸ਼ਟ ਸਾਜਨਾ
0: ਸੁਖ ਦੁਖ ਜਨ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤਾ ਨਾਨਕ ਪਾਪੋ ਨਿਹਲੇ ਪਾ
1: ਨਿਰਧਨ ਕੋ ਧਨ ਤੇਰੋ ਨਾਉ ਨਿਥਾਵੇ ਕੋ ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਥਾਉ
0: ਨਿਮਾਨੇ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੋ ਮਾਨ ਸਗਲ ਘਟਾ ਕੋ ਦੇ ਬਹੁਦਾਨ
1: ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਹਰ ਸੁਆਮੀ ਸਗਲ ਘਟਾ ਕੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ
0: ਆਪਣੇ ਗਤ ਮਿਤ ਜਾਣੋ ਆਪੇ ਆਪਣ ਸੰਗ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਰਾਤੇ
1: ਤੁਮਰੀ ਉਸਤ ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਸ ਕੋਏ
0: ਸਰਬ ਧਰਮ ਹੈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ
1: ਸਗਲ ਕਿਰਿਆ ਮੈਂ ਉੱਤਮ ਕਿਰਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਹਿਰਿਆ
0: ਸਗਲ ਉਦਮ ਮੈਂ ਉਦਮ ਭਾਲਾ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਸਦਾ
1: ਸਗਲ ਬਾਣੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਕੋ ਜਸ ਨੂੰ ਰਸਮ ਬਖਾਨੀ
0: ਸਗਲ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਉੱਤਮ ਥਾਂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਘਟ ਬਸੈ ਹਰ ਨਾਮ
1: ਸੁਖ ਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਵ ਨਾਮ ਭਗਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ ਅੱਠ ਤਿੰਨ ਸਲੋਕ
0: ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰ ਇਹ ਆਨਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲ ਜਿਨ ਕੀ ਆਤਿਸ਼ਚੀਤ ਰੱਖ ਨਾਨਕ ਨਿਭੀ ਨਾਲ ਸਤ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਰਾਮਈਆ ਕੀ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪਰਾਨੀ ਕਮਨ ਮੂਲ ਤੇ ਕਮਨ ਦਸ਼ਟਾਨੀ
0: ਜਿਨ ਤੂੰ ਸਾਠ ਸਵਾਰ ਸਿਗਾਰਿਆ ਗਰਭ ਅਗਨ ਮਹਿ ਜਿਨੈ ਉਬਾਰਿਆ
1: ਬਾਰ ਬਸਤਾ ਤੁਝੇ ਪਿਆਰੈ ਦੂਧ ਪਰ ਜੋਬਨ ਭੋਜਨ ਸੁਖ ਸੂਦ
0: ਬਿਰਧ ਭਇਆ ਉਪਰ ਸਾਖ ਸੈਨ ਮੁਖ ਪਿਆ ਬੈਠ ਕਉ ਦੈਨ
1: ਇਹੋ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕੁਛੂ ਨਾ ਬੁਝੈ ਬਖਸ਼ ਦੇਹੋ ਤੋ ਨਾਨਕ ਸੀਜੈ
0: ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਧਾਰ ਉਪਰ ਸੁਖ ਬਸਹਿ ਸੁਤ ਭਰਾਤ ਮੀਤ ਬਨਤਾ ਸੰਘਰਸ ਹੈ
1: ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੀਵੇ ਸੀਤਲ ਜਲਾ ਸੁਖਦਾਈ ਪਵਨ ਪਾਵਕ ਅਮੁਲਾ
0: ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੋਗੈ ਸਭ ਰਸਾ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਸੰਗ ਸਾਥ ਵਸਾ
1: ਦੀਨੇ ਹਸਤ ਪਾਵ ਕਰ ਨੇਤਰ ਰਸਨਾ ਤਿਸੇ ਤਿਆਗ ਅਵਰ ਸੰਗਰਚਨਾ
0: ਐਸੇ ਦੁਖ ਮੂੜ ਅੰਧ ਬਿਆਪੇ ਨਾਨਕ ਕਾਢ ਲੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ
1: ਆਦ ਅੰਨ ਜੋ ਰਾਖਨ ਹਾਰ ਤਿਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਨ ਕਰੈ ਗਵਾਰ
0: ਜਾਕੀ ਸੇਵਾ ਨਮ ਨਿਧ ਪਾਵੈ ਤਾਂ ਸੋ ਮੂੜਾ ਮਨ ਹਿਲਾਵੈ
1: ਜੋ ਠਾਕਰ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ ਤਾਕੋ ਅੰਧਾ ਜਾਨ ਦੂਰੇ
0: ਜਾਕੀ ਟਹਿਲ ਪਾਵੈ ਦਰਗੈ ਮਾਨ ਤਿਸਹਿ ਬਸਾਰੈ ਮੁਗਧ ਅਜਾਨ
1: ਸਦਾ ਸਦਾ ਭੂਲਨ ਹਾਰ ਨਾਨਕ ਰਾਖਨ ਹਾਰ ਅਪਾਰ
0: ਰਤਨ ਤਿਆ ਕੌਡੀ ਸੰਗ ਰਚੈ ਸਾਚ ਛੋੜ ਝੂਠ ਸੰਗ ਮਚੈ
1: ਜੋ ਛੜਨਾ ਸੋ ਅਸਤਰ ਕਰਮਾਨ ਹੈ ਜੋ ਹੋਵਨ ਸੋ ਦੂਰ ਪਰਾਨ ਹੈ
0: ਛੋੜ ਜਾਏ ਤਿਸ ਕਾ ਸਰਮ ਕਰੈ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਤਿਸ ਪਰ ਹਾਰੈ
1: ਚੰਦਨ ਲੇਪ ਉਧਾਰੈ ਧੋਏ ਗਰ ਤੀਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੰਗ ਹੋਏ
0: ਅੰਧ ਕੂਪ ਮੈਂ ਪਤਤ ਵਿਕਰਾਲ ਨਾਨਕ ਕਾਢ ਲਿਹੋ ਪ੍ਰਭ ਦਇਆਲ
1: ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ ਲੋਕ ਪਚਾਰਾ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ
0: ਬਾਹਰ ਭੇਖ ਅੰਤਰ ਮਲ ਮਾਇਆ ਛਪ ਸਨਾਹੇ ਕਛ ਕਰੈ ਛਪਾਇਆ
1: ਬਾਹਰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਇਸਨਾਨ ਅੰਤਰ ਵਿਆਪੈ ਲੋ ਸਵਾਨ
0: ਅੰਤਰ ਅਗਨ ਬਾਹਰ ਤਨ ਸੁਹਾ ਗਲ ਪਾਥਰ ਕੈਸੇ ਤਰੈ ਅਥਾਹ
1: ਜਾ ਕੇ ਅੰਤਰ ਵਸੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਨਾਨਕ ਤੇਜਨ ਸਹਿਜ ਸਮਾਰ
0: ਸੁਣ ਅੰਧਾ ਕੈਸੇ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ ਕਰ ਗਹਿ ਲਿਹੋ ਉੜਨ ਵਿਹਾਵੈ
1: ਕਹਾ ਬੁਜਾਤ ਬੁਜੈ ਡੋਰਾ ਨਿਸਕੀਏ ਤੋ ਸਮਝੇ ਭੋਰਾ
0: ਕਹਾ ਵਿਸ਼ਨ ਪਦ ਗਾਵੈ ਗੁੰਗ ਜਤਨ ਕਰੈ ਤੋ ਪੀ ਸੁਰ ਭੰਗ
1: ਕਹਾ ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਰ ਭਵਨ ਨਹੀਂ ਹੋਤ ਕੂਹਾ ਉਸ ਗਵਨ
0: ਕਰਤਾਰ ਕਰੁਣਾ ਮੈਂ ਦੀਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰੈ ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤਰੈ
1: ਸੰਗ ਸਹਾਇ ਸੋ ਆਵੇ ਨਾ ਚੀਤ ਜੋ ਬਹਿ ਰਾਏ ਤਾ ਸੋ ਪੀਤ
0: ਬਲੂਆ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਭੀਤਰ ਵਸੈ ਆਨੰਦ ਕੇਲ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਰਸੈ
1: ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਮਾਨੈ ਮਨੈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਾਲ ਨਾ ਆਵੈ ਮੂੜੈ ਚੀਤ
0: ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਝੂਠ ਵਿਕਾਰ ਮਹਾ ਲੋਭ ਧਰੋਹ
1: ਇਹੋ ਜੁਗਤ ਬਿਹਾਨੇ ਕਈ ਜਨਮ ਨਾਨਕ ਰਾਖ ਲਿਓ ਆਪਨ ਕਰ ਕਰਮ
0: ਠਾ ਕਰ ਤੋਂ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ ਜਿਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ
1: ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੇਰੇ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੂ ਗਨੇਰੇ
0: ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੈ ਤੁਮਰਾਂਤ ਉੱਚੇ ਤੇ ਉੱਚਾ ਭਗਵੰਤ
1: ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੈ ਸੂਤਰਧਾਰੀ ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੁਆਗਿਆਕਾਰੀ
0: ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮੈਂ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨੀ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ
1: ਸੁਖ ਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਵ ਨਾਮ ਭਗਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ ਅੱਠ ਚਾਰ ਸਲੋਕ
0: ਦੇਨ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭ ਛੋੜ ਕਹਿ ਲਾਗੈ ਆਨ ਸੁਆਏ ਨਾਨਕ ਕਹੂ ਨਸੀ ਜਈ ਬਿਨਾਵੈ ਪਤ ਜਾਏ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਦਸ ਵਸਤੂ ਲੈ ਪਾਛੇ ਪਾਵੈ ਇੱਕ ਬਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਖੋਟ ਗਵਾਵੈ
0: ਏਕ ਭੀਨਾ ਦੇ ਦਸ ਭੀਹਰ ਲੈ ਤਾਉ ਮੂੜਾ ਕਹੁ ਕਹਾਂ ਕਰੇ
1: ਜਿਸ ਠਾਕਰ ਸੋ ਨਾਹੀ ਚਾਰਾ ਤਾ ਕੋ ਕੀਜੈ ਸਦ ਨਮਸਕਾਰਾ
0: ਜਾ ਕੈ ਮਨ ਲਾਗਾ ਪ੍ਰਭ ਮੀਠਾ ਸਰਬ ਸੂਖ ਤਾਹੂ ਮਨ ਬੂਠਾ
1: ਜਿਸ ਜਨ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਮਨਾਇਆ ਸਰਬ ਥੋਕ ਨਾਨਕ ਤਿਨ पाया।
0: अगंत साहू अपनी दे रास, खात पीत बरतै आनंद उलास।
1: अपनी अमान कछ बहुर साले, अज्ञानी मन रोस करे।
0: अपनी प्रति तापी खूवै, बहुर उसका विश्वास न होवै।
1: जिसकी बस्ति सागे राखै, पप की आज्ञा माने माथै।
0: उसते चौगुन करे निहाल, नानक साहिब सदा दयाल।
1: अनक पात माया के हे, सर पर होत जान अनेक।
0: बिरह की छाया सो रंग लावै, ओ बिन सह ओ मन पछतावै।
1: ज्योति सह सो चालन हार, लपट होतै अंध अंधार।
0: बटाऊ स्यों जो लावै, नेहे ताको हाथ ना आवै के हे।
1: मन हर के नाम की पीत सुखदाई, कर कृपा नानक आप लै लाई।
0: मिथ्या तन धन कुटम्ब सुबाया, मिथ्या हो मैं ममता माया।
1: मिथ्या राजु मंतन माल, मिथ्या काम क्रोध विकराल।
0: मिथ्या रथ हस्ती अस वस्त्रा, मिथ्या रंग संग माया पे खस्ता।
1: मिथ्या त्रोह मोह अभिमान, मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान।
0: अस्त्र भगत साध की शरण, नानक जप जप जीवै हर के चरण।
1: मिथ्या शरण पर निंदा सुने, मिथ्या हस पर दरुक हिरे।
0: मिथ्या नेत्र पेखत पर तिर रूपाद, मिथ्या रसना भोजन अनुसवाद।
1: मिथ्या चिन्ह पर विकार कुतावै, मिथ्या मन पर लोभ लुभावै।
0: मिथ्या तन ही पर उपकारा, मिथ्या बास लेत विकारा।
1: बिन मुझे मिथ्या सब पै, सफल दे नानक हर हर नाम लै।
0: बिरथी साख्त की आर जा, सच बिना कह होवत सूचा।
1: बिरथा नाम बिना तन अंध, मुखावता कह दुर्गंध।
0: बिन सिमरन दिन रैन बिरथा बिहाए, मेघ बिना ज्यों खेती जाए।
1: गोविंद भजन बिन बिथे सब काम, ज्यों कर प्रते निरार दाम।
0: धन धन ते जन जिह घट बस्यो, हर नाओ नानक ताकै बल बल जाओ।
1: रहत वर कछ अवर कमावत, मानी पीत मुखो गंडलावत।
0: जानन हार प्रभु परवीन, बाहर भेख न काहू पीन।
1: और उपदेश है अपना करै, आवत जावत जन मैं मरै।
0: जिसकै अंतर बसै निरंकार, तिसकी सीख तरै संसार।
1: जो तुम भाने तिन पर जाता, नानक उंजन चन पराता।
0: करो बेनती पार ब्रह्म सब जानै, अपना किया आप मानै।
1: आपे आप करत नवेरा, किसे दूर जिनावत किसे बुझावत नेरा।
0: उपाव स्यानप सगल ते रहत, सब कछ जानै आत्म की रहत।
1: पावै तिसलै लड़ लाए, थान थनंत रहा समाए।
0: सो सेवक जिस कृपा करी, निमख निमख जप नानक हरी।
1: सुख मनि सुख अमृत पब नाम, भग जना कै मन विश्राम। अठ पंज सलोक,
0: काम क्रोध अर लोभ मोह बिनस जाए अहमेव। नानक प्रशर नागती कर प्रसाद गुरुदेव। सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपदी।
1: जय प्रसाद छत्ति अमृत खाहे, तिस ठाकुर पूरख मन माहे।
0: जय प्रसाद सुगंध तन लावे, तिसको सिमरत परमगत पावे।
1: जय प्रसाद बसे सुख मंदर, तिसे त्याज सदा मन अंदर।
0: जय प्रसाद ग्रह संग सुख बसना, आठ पहर सिमरो तिस रसना।
1: जय प्रसाद रंग रस भोग, नानक सदा त्याय त्यावन जोग।
0: जय प्रसाद पाठ पटम्बर हंडावे, तिसे त्याका तब लुभावे।
1: जय प्रसाद सुसे सुई जय, मन आठ पहता का जस गवी जय।
0: जय प्रसाद तुझ सब को मान, मुखता को जस रसन बखाने।
1: जय प्रसाद ते रहता धर्म, मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म।
0: रब जी जप्त दरगै मान, पावे नानक पत सेती घर जावे।
1: जय प्रसाद और कंचन देही, लिवलाओ तिस नाम स्नेही।
0: जय प्रसाद तेरा उला रहत, मन सुख पावे हर हर जस कहत।
1: जय प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाकै, मन सन्नी प्रभ ठाकर प्रभता कह।
0: जय प्रसाद तुझ को न पहुंचै, मन सास सास सिमरो प्रभु उच्चे।
1: जय प्रसाद पाई दुर्लभ देहे, नानक ताकी भगत करे।
0: जय प्रसाद आभूखन पहरी जय, मन तिन सिमरत क्यों आलस की जय।
1: जय प्रसाद असु हस्त असवारी, मन तिस पर को कबू ना बिसारी।
0: जय प्रसाद बाग मिलख तना, राख पुरो प्रभ अपने मना।
1: जिन तेरी मन बंत बनाई, उठत बैठ सत सह त्याई।
0: तिसै त्या जो एक अलख है, इहां उहां नानक तेरी रखै।
1: जय प्रसाद करे पुन बहुदान, मन आठ पहर कर तिसका ध्यान।
0: जय प्रसाद तू आचार बिहारी, तिस प्रभ को सास सास चितारी।
1: जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप, सो प्रभ सिमरो सदा अनूप।
0: जय प्रसाद तेरी नीकी जात, सो प्रभ सिमर सदा दिन रात।
1: जय प्रसाद तेरी पत्र है, गो प्रसाद नानक जस कह।
0: जय प्रसाद सुनै करनाद, जय प्रसाद पेखै बिस्माद।
1: जय प्रसाद बोले अमृत रसना, जय प्रसाद सो सहजे बसना।
0: जय प्रसाद हस्त कर चल है, जय प्रसाद संपूर्ण फल है।
1: जय प्रसाद परम गत पावे, जय प्रसाद सो सह समावे।
0: ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लागो, गुर प्रसाद नानक मन जागो।
1: जय प्रसाद तू पर संसार, तिस प्रभ को मूल न मनो विसार।
0: जय प्रसाद तेरा प्रताप, रे मन मूड तुता को जाप।
1: जय प्रसाद तेरे कारज पूरे, तिसे जान मन सदा हजूर है।
0: जय प्रसाद तू पावे साच, रे मन मेरे तू ता सुराच।
1: जय प्रसाद सब कीत होए, नानक जाप जपै जप सोए।
0: आप जपाई जपै सो नाओ, आप गावे सो हर गुण गाओ।
1: प्रभ कृपा ते होए प्रगास, प्रभु दया ते कमल विगास।
0: प्रभ सो प्रसन्न बसै मन सोए, प्रभ दया ते मत उत्तम होए।
1: सर्व निधान प्रभ तेरी मैया, आपो कछु ना किन्हु लया।
0: जित जित लावो तित लगै, हर नाथ नानक किन कै कछु न हाथ।
1: सुख मनी सुख अमृत पब नाम, भगत जना कै मन विश्राम। अठ छे श्लोक।
0: आगम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कह सुमुक्ता होए सुन मीता नानक बिनवंता साध जना की अचार्य कथा सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपदी
1: साधक संग महूजल होत सत्संग मल सगली को
0: साधक संग मिटै अभिमान साधक संग प्रगटै सो ज्ञान
1: साधक संग बुझे परनेरा सत्संग सुबहुत नबेरा
0: साधक संग पाए नाम रतन साधक संग कूपर जतन
1: साध की महिमा बरने कौन पुरानी नानक साध की शोभा ब्रह्म है समानी
0: साधक संग अगोचर मिलै साधक संग सदा प्रफुल
1: साधक संग आवे बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा
0: साध संग होए सब की रेन साधक संग मनोहर बैन
1: साधक संग न कतहु धावे साध संग अस्तित्व मन पावे
0: साधक संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभु सो प्रसन्न
1: साध संग दुश्मन सब मीत साधु के संग महापुनी
0: साध संग किसे नहीं बैर साधक संग न बींगा पैर
1: साधक संग नहीं को मंदा सत्संग जाने परमानंदा
0: साधक संग नहीं हो ताप साधक संग तजै सा बाप
1: आपे जाने साध वडाई नानक साध प्रभु बनियाई
0: साधक संग न कबहू तावे साधक संग सदा सुख पावे
1: साध संग बस अगोचर लह साधु के संग अजर सह
0: साधक संग बसै थान उचै साधु के संग महल पहुंचै
1: साध के संग दिड़े सब धर्म साध के संग केवल पार ब्रह्म
0: साधक संग पाए नाम निदान नानक साधु कै कुर्बान
1: साधक संग सब कुल उधारे साध संग साजन मीट कुटुंब निस्तारे
0: साधु कै संग सो धन पावे जिस धन ते सब को बरसावे
1: साध संग धर्म राय करे सेवा साधक संग सुबह सुर देवा
0: साधु कै संग पाप पलायन साध संग मृत गुण गायन
1: साध कै संग सर्वथान गम नानक साध कै संग सफल जन्म
0: साधक संग नहीं कछ काल दर्शन भेट होत निहाल
1: साधक संग कुलूकत हरै साधक संग नर पर हरै
0: साधक संग इहां उहां सुहिला साध संग बिछड़त हर मेला
1: जो इच्छा सोई फल पावै साधक संग न बिरथा जावै
0: पार ब्रह्म साध रिद वसै नानक उदरै साध सुन रसै
1: साधक संग सुनो हर नाउ साध संग हर के गुण गाओ
0: साधक संग न मन ते बिसरै साध संग सर पर निस्तरै
1: साधक संग लगे प्रभु मीठा साधु कै संग गड़गड़ डीठा
0: साध संग पै आज्ञाकारी साध संगत भई हमारी
1: साधक संग मेटै सब रोग नानक साध भेटै संजोग
0: साध की महिमा भेद ना जानै जीता सुनै तेता बखियानै
1: साध की उपमा तेह गुण ते दूर साध की उपमा रही भरपूर
0: साध की शोभा का नाही अंत साध की शोभा सदा बेअंत
1: साध की शोभा उई ते उची साध की शोभा मूज ते मूची
0: साध की शोभा साध बनाई नानक साध प्रा भेद न पाई
1: सुख मनी सुख अमृत पब नाम भगत जना कै मन विश्राम अठ सत श्लोक
0: मन साचा मुख साचा सोए अबर न पेखै एक बिन कोए नानक हे लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपदी
1: दम ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल अलेप
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख जैसे सूर सर्व कौ सोख
1: दम ज्ञानी कै दिस समान जैसे राज रंग को लागे तुल पवान
0: ब्रह्म ज्ञानी कै धीर जेक ज्यो बसदा को खोदै को चंदन ले
1: ब्रह्म ज्ञानी का है गुनाव नानक जो पावक का सही स्वभाव
0: ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागे जला
1: ब्रह्म ज्ञानी के मन होए प्रगास जैसे तार ऊपर आकाश
0: ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र समान ब्रह्म ज्ञानी कै नाही बिमान
1: ब्रह्म ज्ञानी उचते उचा मन अपने है सब ते नीचा
0: ब्रह्म ज्ञानी से जन भए नानक जिन प्रभु आप करे
1: ब्रह्म ज्ञानी सगल किरीना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना
0: ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न भया
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा संदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दिस अमृत बरसी
0: ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल युगता
1: ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान
0: ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
1: ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी समाहा ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाहा
0: ब्रह्म ज्ञानी कै नाही धंधा ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा
1: ब्रह्म ज्ञानी कै होए सुफला ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला
0: ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार
1: ब्रह्म ज्ञानी कै कै रंग ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रभु संग
0: ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा सब जागत ब्रह्म ज्ञानी अहबुत त्याग
0: ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदा आनंद
1: ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
0: ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म कविता ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता
1: ब्रह्म ज्ञानी का होए अचिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत
0: ब्रह्म ज्ञानी जिस करै प्रभाव ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप
1: ब्रह्म ज्ञानी का दस बड़ भागी पाई है ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए
0: ब्रह्म ज्ञानी को खोज महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर
1: ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है ब्रह्म ज्ञानी का सगल मन मा
0: ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश
1: ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाए अधाखर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकर
0: ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखानै ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जानै
1: ब्रह्म ज्ञानी का अंतर पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार
0: ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता ब्रह्म ज्ञानी सब जीवै नहीं मरता
1: ब्रह्म ज्ञानी मुकुत जुगत जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता
0: ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ
1: ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार
0: ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बानी नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी
1: सुख मनी सुख अमृत पव नाम भगत जना कै मन विश्राम अठ अठ श्लोक
0: पुर धारै जो अंतर नाम सर्व मैं पेखै भगवान निमख निमख ठाकुर नमस्कार नानक हो अपरस सगल निस्तार सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपदी
1: मिथ्या नाही रसना परस मन मैं पीत निरंजन दर्स
0: पर तेरे रूप न पेखै नेत्र साध की टहल संत संग हेत
1: न सुने काहु की निंदा सब ते जाने आपस को मंदा
0: गुर प्रसाद बिख्या पर हर है मन की बासना मन ते टरै
1: इंद्री जित पाई दोख ते रहत नानक कोट मदे को ऐसा अपरस
0: वैष्णो सोजे सुपर सुपर सन विष्णु की माया ते हुए भिन्न
1: कर्म करत हुए ने कर्म तिस वैष्णो का निर्मल धर्म
0: काहू फल की इच्छा नहीं बाछै केवल भात कीर्तन संग राचै
1: मंत्र अनंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर होवत कृपाल
0: आप दृढ़ अवरह नाम जपावै नानक हो वैष्णो परमगत पावै
1: भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्याग दुष्ट का संग
0: मनते बिनसै सगला भरम कर पूजै सगल पार ब्रह्म
1: सात संग पापा मल खोवै तिस भगवती की मत उत्तम होवै
0: भगवंत की टहल करै नितनीत मंता नरपै विष्णु प्रीत
1: हर के चरण हृदय बसावै नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै
0: सुपंडित जो मन पर बुद्ध है राम नाम आत्म में सुध है
1: राम नाम सारस पीवै उस पंडित के उपदेश जग जीवै
0: हर की कथा हृदय बसावै सुपंडित फिर जो न आवै
1: वेद प्राण सिमरत बुझै मूल सुख में जाने स्थूल
0: चौं वरना को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा आदेश
1: बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चौं वरना में जपे को नाम
0: जो जो जपै तिसकी गत होए साध संग पावै जन कोए
1: कर कृपा अंतर उधारे पशु प्रेत मुक्त पाथर को तारे
0: सर्व रोग औखद नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम
1: काहु जुगत किते ना पाईए धर्म नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म
0: जिसकै मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत रामदास
1: सातु नाम तिस नदरी आया दात संतर भाए तिन पाया
0: सदा नित नित हर जान सो दास दरगै प्रवान
1: अपने दास को आप कृपा करै तिस दास को सब सो जी परै
0: सगल संग आत्म उदास ऐसी जुगत नानक रामदास
1: की आ गया तुम हितावै जीवन मुक्त सो कहावै
0: ऐसा हरक तैसा सोग सदा अनंत नहीं बियोग
1: ऐसा स्वन तैसी उसमाटी तैसा अमृत तैसी बिखाटी
0: तैसा मन तैसा अभिमान तैसा रंग तैसा राजान
1: जो वर्ताए साई जुगत नानक ओ पुरख कहिए जीवन मुक्त
0: पार ब्रह्म के सगले ठाओ जित जित का राखै तैसा तिनाओ
1: आपे कन करावन जोग प्रभावै सुई फन होग
0: पसरे आप हुए अंतरंग लखिन जाहे पार ब्रह्म के रंग
1: जैसी मत दी तैसा प्रगास पार ब्रह्म करता अविनाश
0: सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक भय निहाल
1: सुख सुख अमृत पव नाम भगत जना कै मन विश्राम अठ नौ श्लोक
0: उस्तत करै अनेक जन अंत न पारा वार नानक रचना प्रभ रची बहु बिद अनक प्रकार सत नाम श्री वाहिगुरु अष्टपदी
1: कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी
0: कई कोट भय तीर्थ वासी कई कोट मन पर महदासी
1: कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपीसर होते
0: कई कोट आत्म ध्यान धार है कई कोट कब का विचार है
1: कई कोट नवत नाम ते आवै नानक करते का अंत न पावै
0: कई कोट भय अभिमानी कई कोट अंध ज्ञानी
1: कई कोट कृपन कठोर कई कोट अभिग आत्म निकोर
0: कई कोट पर दर्ब को हिर है कई कोट पर दुख ना कर है
1: कई कोट माया सुरमा है कई कोट परदेश भरमा है
0: जित जित लाभो तित तित लगना नानक करते की जाने करता रचना
1: कई कोट से जती जोगी कई कोट राज रस भोगी
0: कई कोट पंखी सर्प पाए कई कोट पाथर बिरखन पजाए
1: कई कोट पौन पानी बैसंतर कई कोट देश भूमंडल
0: कई कोट ससिर सूर नखत्र कई कोट देव दानविंदर सिर छत्र
1: सुमदरी अपने सूतार है नानक जिस जिस पावे तिस तिस निस्तार
0: कई कोट राजस्थान।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.in।

0: मोडी नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी रानू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा
1: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेरबी टोयोटा दे नाल
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431 465 186 ते 212216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस नारायण

0: नमस्कार, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आप सबका स्वागत। जिंदगी साथ तय करते करते ऐसा लगता है कि हमारा और आपका एक परिवार बन गया है। ऐसे में कोई मुश्किल आपकी जिंदगी में आती है या कभी ऐसा लगता है कि कोई अड़चन है, तो फिर हमारे लिए भी वो परेशानी का सबब बन जाती है और साथ मिलकर इस ज्ञान को जिसे हमने जान लिया है उसके आधार पर उसका सोल्यूशन उसके बारे में जानते हैं कि किस तरह से उसे दूर किया जा सकता है। अगर हम देखें तो इस जीवन में हमारी बहुत सी ऐसी आदतें हैं, कई आदतें अच्छी होती हैं और कई आदतें इतनी मुश्किल हो जाती हैं कि हमारी मजबूरी बन सकती हैं। अगर वो आदत हमें ना भी हो तो हमारे किसी अपने की वो आदत हो सकती है जिसे हम दूर करना चाहते हैं ताकि वो मजबूरी ना बन जाए। आने वाली कुछ कड़ियों में हम इन्हीं आदतों के बारे में जानेंगे कि किस तरह से ये आदत जब हमारी मजबूरी बन जाती है तो उसे क्या हम दूर कर सकते हैं और किस तरह से ज्ञान हमारी मदद कर सकता है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, हमारे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल। आपका स्वागत। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: और हर बार की तरह हमारी हमसफर ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
2: ओम शांति।
0: डॉक्टर पटेल, आपसे शुरुआत करते हैं बातचीत का कि जब हम आम जिंदगी जी रहे हैं कई चीजों की हमें आदत पड़ जाती है क्योंकि हर रोज करते करते दिनचर्या का एक हिस्सा बन जाती है, तो लेकिन देखा गया है कि कभी कभी ऐसा वक्त आता है कि उन आदतों को हमारी मजबूरी हम मान लेते हैं कि उनके बिना हमारा काम ही नहीं चल पा रहा होता, तो तब हमें परेशानी लगती है। अगर हम इन आदतों के बारे में सचमुच में जानने की कोशिश करें तो कौन सी हैं वो आदतें जो हमारी मजबूरी में बदल सकती हैं।
1: मूल रूप से जो आप बात कर रहे हैं उसमें जब आमतौर पर हम सोचते हैं मनोविज्ञान के विषय में जब सोचते हैं तो अधिकतर एडिक्शन है, व्यसन है कि कोई व्यक्ति अगर थोड़े दिन भी शराब पीने लगता है और फिर एक दिन शराब न पिए तो उसे जो तकलीफ होती है ना, उसको हम आमतौर पर एडिक्शन कहेंगे। जैसे ड्रग्स भी है, बहुत सारे ड्रग्स है कि जिसकी भी एक मजबूरी हो जाती है, परंतु छोटी छोटी बातें भी,
0: इवन स्मोकिंग निकोटीन का जो है उसे भी व्यसन माने। ये मोटे मोटे तौर पर है, अगर हम सूक्ष्म
1: सूक्ष्म बातों पर अगर हम सोचे तो चॉकलेट्स खाने की आदत हो सकती है, आज कई है नहीं, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने भी एक बार कहा था कि भी भोजन के बाद मैं मीठा नहीं खाऊं तो मुझे नहीं चलता है, भी रोज रात्रि के भोजन के बाद कोई मीठी डिश खाने की इच्छा होती है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो वह भी एक प्रकार से देखो तो एडिक्शन। ऐसे और बातें भी हो सकती है जैसे कि किसी को गुस्सा करने की आदत हो जाती है, छोटी सी बात को लेकर के भी वो गुस्से में आ जाते हैं, या तो दे वुड नो स्टार्ट फाइटिंग। आज यूथ में देखो, बच्चों में देखो, तो छोटा सा कारण देख करके भी दे विल इनिशिएट फाइटिंग, व्हेन आई हैड सिमिलर थिंग व्हेन आई वाज स्मॉल। तो अभी जब बड़ा हुआ सोचने लगा, मनोविज्ञान को पढ़ा, तो इसके बारे में सोचने लगा तो पता चला कि सचमुच देयर वाज समथिंग रॉन्ग। और बच्चों की गलती नहीं होती थी, स्टिल आई विल इनिशिएट फाइट एंड एंजॉय इट।
0: अच्छा, एंगर को एंजॉय करने लगते हैं। एक्चुअली वही है एडिक्शन, जब हम एंजॉय करने लग जाए तो, या कोई भी आदत हम एंजॉय करने लग जाए जो नेगेटिव है, वो एडिक्शन बन जाती है।
1: हाँ, वो मतलब एडिक्शन की शुरुआत हुई है। और भी अगर आगे बढ़े और वो बात ना हो और फिर अगर आपको तकलीफ होती है, अंदर में आप अनकंफर्टेबल फील होते हैं, सर भारी हो गया और कई बातें भी, तो सचमुच कहेंगे कि एडिक्शन।
0: बिल्कुल डॉक्टर पटेल, जिस तरह से आपने कहा, बहुत ही सुंदर आपने बात कही कि कहीं ना कहीं हमें अपने अंदर ही देखना पड़ेगा, कई ऐसी आदतें हैं जो हमारी एडिक्शन बन सकती हैं। स्पिरिचुअली अगर हम देखें, सिस्टर शिवानी, जिंदगी जीते हुए आज हम जिस अवेयरनेस के साथ जी रहे हैं, एक्चुअली ये आदत जब व्यसन की तरफ या मजबूरी की तरफ बढ़ रही होती है, व्हाट एक्चुअली हैपेंस इनसाइड अस?
2: आई थिंक थिंकिंग, क्योंकि हमने देखा कि आदतें कैसे बनती हैं। हम एक थॉट क्रिएट करते हैं जो एक बिलीफ सिस्टम के ऊपर बेस्ड है। हमने एक संकल्प क्रिएट किया, बुद्धि उसको परखती है, निर्णय देती है और फिर वो एक्शन में आता है, और जो एक्शन में आ गया वो एक इम्प्रेशन छोड़ जाता है, और बार बार जब अब वो हमने कर्म किया तो वो एक संस्कार बन जाता है। अब कुछ टाइम बाद क्या हो जाता है कि हम इतनी बार वो कर्म को रिपीट करते हैं, वो हमारे संस्कार इतना डीप रूटेड हो जाता है कि इंटेलेक्ट उस पर अपनी जजमेंट देना बंद कर देती है। तो इट्स लाइक अ गेट जिसको हम बाईपास कर जाते हैं कि थॉट आया, इंटेलेक्ट ने उस पर अपना डिसीशन नहीं दिया कि ये राइट है या रॉन्ग है, क्योंकि इंटेलेक्ट ने कई बार डिसीशन दिया था लेकिन हमने उसको बाईपास कर दिया। तो अब वो जिसको हम कहते हैं कि वो आवाज जो अंदर से आती थी वो आनी बंद हो गई, बट इट्स बेसिकली वो विवेक, वो अब काम नहीं कर रहा। तो थॉट क्रिएट हुआ और सीधा कर्म में आ गया। एंड फिर वापस उसका इम्प्रेशन पड़ गया, तो ये एक बहुत डीप रूटेड साइकिल चलता जाता है,
3: विशेष करके जिसे हम कहते हैं जहां कहीं ना कहीं हमारी विल पावर जो है, विल पावर
1: शिवानी बन कर शी माइट ऑल्सो एग्री कि संस्कार बुद्धि को सप्रेस भी करते हैं, या तो कहेंगे कि उसको मोटिवेट करते हैं कि यही करो, जैसे चॉकलेट खाने की आदत की बात कही, तो अगर संस्कार हो गए तो वो संस्कार उसे अफेक्ट करेंगे, कहेंगे पुल करेंगे या पुश करेंगे,
3: चॉकलेट चॉकलेट अगर दिख भी नहीं रही तब भी याद आएगी,
1: तब भी याद आएगी, और थोड़ा भी क्लूज भी मिल जाए, कहीं रैपर भी दिख गया है चॉकलेट्स का, उसे याद आ जाएगा कि मुझे चॉकलेट्स खानी है,
3: एंड देन आई विल स्टार्ट लुकिंग फॉर इट।
1: हाँ, इवन बुद्धि भी, एक बार अगर ये हुआ आपने किया तो बुद्धि को भी उसी प्रकार का जजमेंट लेने की, बुद्धि है ना वेइंग स्केल जैसी है जिससे हम माप करते हैं भी कितना वजन है, तो बुद्धि फिर जो वे करती है ना वो भी नेगेटिवली करेगी। फॉर एग्जांपल कि मुझे आदत हो गई कैडबरीज खाने की, तो भले मेरा वेट बढ़ रहा है, तो एक प्रकार से तो बुद्धि में कि भी वेट बढ़ रहा है, मैं कैडबरीज खाऊंगा वेट और बढ़ेगा, परंतु तब अगर ये आदत हो गई है तो बुद्धि कहती नहीं नहीं खा लो, और चीजें सोचेगी कि अरे इससे थोड़ा रिलैक्स मिलता है। ये ज्ञान बड़ा इंटरेस्टिंग है। ब्रह्मा कुमारीज में भी जब मैंने इनिशिएशन लिया तो ये बात मुझे सबसे अच्छी लगी, जो सारा खेल है वह है मन बुद्धि और संस्कार का खेल, अगर तीनों को ठीक से आपने मैनेज नहीं किया तो इसे बहुत सारी चीजें जो मजबूरी में परिवर्तन हो जाएगी।
0: डॉक्टर पटेल, अगर हमने अभी मोटे मोटे तौर पर हमने बात की है कि कौन सी ऐसी आदतें हैं जो व्यसन का या मजबूरी का या एडिक्शन का रूप ले सकती हैं, अगर और डीप में जाएं तो क्या क्या चीजें और हो सकती हैं? चॉकलेट की कैसी बात, क्योंकि अभी तक हम जनरली ये सोचते थे कि स्मोकिंग, निकोटीन का जो इनटेक है, स्निफिंग करना या ड्रग्स, ड्रिंक्स या इवन गुटखा, यही है जो क्योंकि वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं, यू नो फिजिकली कर रही हैं, तो वही है जो एडिक्शंस हैं। आगे इसके डीप और हमारी जिंदगी में भी कुछ कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो एडिक्शन का रूप ले सकती हैं।
1: और जैसे सिंपल सी चीजें जिसे हम आमतौर पर एडिक्शन नहीं मानते हैं वह है चाय कॉफी। आज कॉफी को तो मेडिकल साइंस में भी बोलना है कि उसके फायदे हैं, टीज के बेनिफिट्स भी डिस्कस करने लगे, बट मैं सोचता हूँ कि भी थोड़ा सा तो ठीक है, परंतु ये कंपनीज ज्यादा मोटिवेट करती है, जो रिसर्च आ रही है ना अधिकतर उसे बिलीव नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले से ये माइंड सेट होता है कि मैम ये प्रूव करना है कि भी कैफीन अच्छा है,
0: रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जो हमें जा रही है। बिल्कुल,
1: क्योंकि जो कंपनीज को अपने प्रोडक्ट्स को सेल करनी है इसके लिए अधिकतर वो रिसर्च देते हैं, अदरवाइज इट्स अ प्रूवन फैक्ट, उसकी आदत होती है।
0: इनफैक्ट ये बिना सोचे ही हम वो कॉफी का कप उठा लेते हैं, चाय का कप उठा लेते हैं और पीने लगते हैं,
1: और अगर नहीं मिला तो
0: सर में दर्द,
1: हाँ एक घंटा भी नहीं हुआ सर दर्द, पाल्पिटेशन होने लगेगा, यू विल फील अनकंफर्टेबल, डिसीजन नहीं ले पाते हैं, और हार्मफुल इफेक्ट्स आर नोन टू एन एक्सटेंड एटलीस्ट, कि भी वो एसिडिटी क्रिएट करेगी, एक स्फिंक्टर होता है इसोफेगस और पेट के बीच में एक द्वार है जिसको लूज कर देती है, तो एसिड आएगा और रिफ्लेक्स इसोफेजाइटिस होगा जिसको आमतौर पर हम एसिडिटी कहते हैं। आज बच्चों में भी गुटखा सिंपल चीज नहीं है, आज आमतौर पर यही सोचते हैं कि भी सरल सी चीज है, उससे थोड़ा कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, अच्छा लगता है, परंतु कॉलेज के विद्यार्थियों में ऑलमोस्ट 70% है उनको इसका व्यसन हो।
0: डॉक्टर पटेल, एक और एस्पेक्ट हम बात करना चाहते हैं कि ये तो हमने फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं सारे, कि ये जो छोटी छोटी चीजें जो हमारी आदतें पड़ चुकी हैं, आजकल ये देखा गया है टेलीविजन की एडिक्शन है, कंप्यूटर्स की एडिक्शन है, और वो भी अब वो एडिक्शन है या क्योंकि वो कंटिन्यूस बैठे रहते अगर कंप्यूटर नहीं कर पा रहे तब मुश्किल है, टेलीविजन के वो पर्टिकुलर प्रोग्राम्स नहीं देख पा रहे तब भी, मैंने देखा है कि विमेन जो सीरियल देखती हैं अगर एक एपिसोड छूट जाता है तो देर इज अ हेडेक, तो ये भी सारे क्या एडिक्शन में
1: आ? बिल्कुल, अभी दो दिन पहले ही एक नौजवान था जो मेरे पास आया, उसने कहा कि मैं कंप्यूटर पर काम करता हूं तब तक मुझे अच्छा लगता है, अगर कोई मुझे और कोई काम दे दे कि ऑल ऑफिस वर्क करो तो मुझे चिड़चिड़ापन आ जाता है, तो दिस इज एडिक्शन। इनफैक्ट सिर्फ इंटरनेट का ही, इंटरनेट का एडिक्शन तो बहुत कॉमन है कि सारा दिन इंटरनेट पर सर्फिंग करते रहेंगे, अगर थोड़ा भी उन्हें मौका नहीं मिला तो सर दर्द हो जाएगा, इरिटेशन होगी, नींद नहीं आएगी।
0: सिस्टर शिवानी, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अवेयरनेस, जब हम बात कर रहे हैं जागरण की आज, तो अब ये सारी बातें अगर हम बात देखें तो चॉकलेट खाना तो मैं मान ही लेती हूँ कि ये आदत है मेरी, मुझे अच्छा लगता है इसलिए करती हूँ, लेकिन क्या मैं ये समझ सकती हूँ, कैसे मैं ये जानूं कि मेरी जो आदत है ये मेरी मजबूरी बनती जा रही है? हाउ कैन आई डू इट विद अवेयरनेस?
2: जिस क्षण हमें ये लगने लगे कि इसके बिना अब हम रह नहीं सकते,
3: सर में दर्द हो रहा है या कोई फिजिकल,
2: नहीं इवन इंटरनली यू नो वो खींचती है वो चीज मुझे, फिजिकल मैनिफेस्टेशन उसका सर दर्द या बॉडी में जो भी परिवर्तन आए वो तो फिर दूर की बात, लेकिन संकल्प मेरा जिस तरफ जाता है, अगर जैसे कंप्यूटर का एडिक्शन है, अब दूसरा काम करने बैठे हैं लेकिन थॉट इज गोइंग बैक टू द कंप्यूटर, तो एडिक्शन पहले तो संकल्प लेवल पर आएगी ना, तो हम कर एक चीज रहे हैं लेकिन माइंड उस पर न कॉन्सेंट्रेट होकर दूसरी चीज की तरफ वापस खींचता हुआ जा रहा है जब तक मुझे वो चीज नहीं मिल जाती, सपोज चाय या जो भी चीज इस तरह से जो लैकिंग है, तो जब तक वो नहीं मिलेगा माइंड उस तरफ ही खिंचता जाएगा, सो आई कम टू नो यू नो आई एम अडिक्टेड टू समथिंग एंड दैट्स व्हाई आई एम नॉट एबल टू कंसंट्रेट ऑन व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, एंड मेरे को लगता है सबसे डीप

0: यार तू इतनी इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

शाम पिया मुरी रंग दे चुनरिया, बिल्कुल स्पष्ट है इसका अर्थ। और गहराई में जाएं और ध्यान दें तो एक नया अर्थ सामने आता है। रंग भी शाम है और पिया भी शाम है, तो शाम रंग में पिया मोरी रंग दे चुनरिया। शब्दों की ओर ध्यान दें।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हां जी हां जी
1: रेडियो हां जी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच। हुन तुहाडे मोढे नाल मोढा मिला के तुहाडी तरक्की दी राह नूं होर वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा,
3: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई, जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
2: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट चॉइस।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406 660 960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी रेडियो हांजी
2: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे थोड़ी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
2: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
3: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
2: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
2: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
3: आहो जी आहो।
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
4: हाय, दिस इज आयुष्मान खुराना एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो हांजी।

0: Radio Hanji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station.
1: दिवाली रोशनी का त्योहार, तो चलो शान के साथ जायके से लगाएं इसमें चार चांद। रिवाजों के रंग, खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार। अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी, चना मसाला, पालक पनीर, किचन किंग, दाल मसाला, चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ। इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ।
2: This autumn, laugh out loud with Ayushman Khurana and Saad Ali Khan in Urda Teer.
3: Ek Pakistani jasoos Hindustan jayega.
4: Deshbhakti to yaad aa gayi.
5: Desh kaun sa hai? Ye bhul gaya.
2: A spy mission gone wrong with hilarious moments.
6: Woh ek border chal rahi hai.
2: Nahi ji, ye to Urda Teer chal raha hai from October 9th at cinemas.